TCL का विभिन्न होम अप्लायंसर को खरीद में कैशबैक तथा श्योर शॉट गिफ्ट्स, वॉशिंग मशीन में 6 केजी एरियल मैटिक, एसी में फ्री इंस्टॉलेशन र नागरिकता मात्र भए पुग्छ। सहज ईएमआई मार्फत खरीद गर्न सकिन्छ। ग्लोबल नंबर 1 TCL, इंस्पायर ग्रेटनेस।

0: Willing Go festivity offer. अब पाउन होस्ट एक वर्ष को 200 Mbps इंटरनेट नेट टीवी साथ में डुअल बैंड राउटर नोकिया बीकन 1.1 मेश राउटर और नेट टीवी सेट अप बॉक्स मात्र रु 1200 प्रति महीना में शर्तहरु लागू होने छन् छिटो भनेकै Willing
1: दमोलिया FM 94.2 समुदाय को आवाज

शर्मा क्रॉम्प्टन ब्रांड का एयर कूलर सीलिंग फैन स्टैंड फैन मिक्सर र आयरन को खरीद में एक्साइटिंग ऑफर पाउन होस हर एक 15 दिन में क्रॉम्प्टन को मिक्सर र बम्पर लक ड्रामा माइडिया डबल डोर रेफ्रिजरेटर जितने मौका पनि नागरिकता मात्र भए पुग्छ सहज ईएमआई मार्फत खरीद गर्न सकिन्छ।

0: दमोली बजार घुम्दा घुम्दै ठकाएर भोक पनि लाइसक्यो, के खाजा खानी होला खै?
1: जान न त मीनाक्षी चटपट एन पानी पुरी पसलमा।
2: हजुर, हामी कहाँ सफा छिटो र मिठो पानी पुरी, चटपट दही पुरी, आइसक्रिम र चिसो पाइन्छ।
1: प्रोपाइटर चन्दन बानिया, ब्यास 2, गणेशमान चोक, बाल मन्दिर गेट अगाडि। सम्पर्क नम्बर 98 26 60 09 91 97 0074 0042 34।